0: चिचक वर्ग दग युमा अन चिचिन उरन अलग कुए से हम बैठक युमा
1: नस्तन ओले हरमेंद नरंग फार तेलगर दग युमा
2: नरंग फार नरान तगच शोतुगु
3: नेगम जुर्मिंग कल्पक्ष उर्तिंग उचलीग हमु जुर्दन उल्पलग जुर्ची दम्दुदी उन्दिस्तनी हमतिन जोक्चिन उखुम्सलीग उजुम बतक हाई
4: 北京时间八点整，
5: 中央人民广播电台，中国之声。